कौन का मान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छत रक्त गौगी सह, जय ज्योत स्वरूप जो संग समावे तय किस भूख कव द्रवतावै, कर्ण ग्राम करने हार नान करते का ना समार, जब अपनी शोभा अपन संग बनाए तब कवन माए बाप मित्र सुत पाए, जय सर्वकला बेपर बीन तय बीरक देव कहाँ को चीन, जब अपन आप उतार तो शगन अप शगन का विचार, जय आपन ऊच अपना आपने रात कौन ठाकुर कौन कही है चीरा, बिस्मर बिस्मर रहे बिस्माद नानक अपनी कत जानो आप, जय छल छेद भेद समाय उहाँ के सब आप तमाया, आप सुको आपे आदेश ते गुण का नाही परवेश, जय एक है एक एक भगवंता तय कौन चिंत किस लागे चिंता, जय अपन आप तियारा तय कौन कतै कौन सुनने हारा, बयान बहु बयंतूर से ऊँचा नानक आप सुको आपे पहुँचा, जय आप रचियो प्रपंच कार ते गुण में किन्नो विस्तार, पापुन तय पई कहावत को नर को स्वर्ग बंछावत, हाल जाल माया जंजाल हमें मोह परम व्यापार, दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की अभिज्ञान, आपन खेल आप कर देखे खेल संकोचे तो नानक एक, जय अवगत भक्त तय आप जय पसरे पासार संप्रताप, धूप का पे तनि उनकी शोभा अनुह बनी आपे, गौद करे अंध चो जे आप रस भोग गुण निर्जोग, जिस भावे तुस अपन नाय लाभ जिस भाव तुस खेल खिलावे, बेस मार था अगंत तो लै ज्यों भला हो त्यो नानक दास बोले श्लोक, जी जंत के ठाकुर राय आपे वर्तन हार, नानक को बसरिया दूजा कह दिष्टारिष्ट पदी, आ कथया सुनने हार आपे का विस्तार, जंत पावे ता सिष्ट पाए अपने भाण लय समाए, तुम ते बर नहीं किस होए अपन सोच सब जगत परोए, जाको प्रभु जी आप बजाए सच नाम सोई जन पाए, सो समदसी सत कविता नानक सगल सृष्ट का जेता, जी जंत सबता कह हाथ दीन दयाल नाथ को नाथ, जिस राख जिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसार, तिस तब का को जाए सब सरेख निरंजन जा राय, जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बार जानो साथ, कुन निदान बेअंत पार नानक दास दा बलिहार, पूर्ण पूर रह दयाल सब उपर होवत कर पाल, अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रह व्याप, प्रतिपाल जीवन बापा तो जो चुर चु सुत सहत आद, जिस भावत सुलय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए, मानंतर विश्वास कर मान करन हर नानक के जानिया, जान लागा है कह ना जिस की आस न व्यर्थी जाए, सेव को सेव बनयाय हो गम पूज पर बद पाए, इससे पर नहीं विचार जगह मन बस्या निरंकार, बंधन तोर पै निर्वैर अंधन पूजे गुर के बैर, ए लोग सुखिए पर लोग सुहिले नानक हर पर व्यापे मेले, सा संग मिल करो नंद गुरु गाव हो पर परमानंद, राम नम तत गुरु विचार दुर्लभ दे क्या करो उदार, अमृत वचन हर के गुण गाव प्राण तन का है सुहाओ, आठ पहर प्रभ खो नेरा मिटया ज्ञान मिट सह अंधेरा, सोन उपदेश हृदय वसाव हो मन छे नानक फल पावो, हलत पद ले सवार राम नम अंतर उतार, पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बसै तो साच प्रखिया, मन तन नाम जपो ले बुलाए दुख दर्द मन दे पाओ जाए, साच व्यापार करो व्यापार इधर गए भय खेवत मार, एक अड्डे करो खो मन माहे नानक बहुर ना आवे जाहे, रिश्ते दूर कहाँ को जाए उबरे राखन हार त्याय, नृपा जपै सगल फा मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै, जिस प्रभ राखे तिस नाहे दुख नाम जपत मन होबत सुख, जिता जाय मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुँचन हार, सरु पर ठाडा गुर सूया नानक ताके कार्य पूरा, मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदृत शिष्ट, चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप, तन सेवा सेवक प्रवाद अंतर जमी बरख वरदान, जिस मन बसै सुहोत निहाल ताक निपटन आवत काल, अमर पय अमरा पद।

हर हर हर हर रसना कहो। पुता माता की आशीष निमख न बिसरो तुम कहो हर हर। सदा भजो जगदीश सो कहो टल गुर सेवी है। अहनस सहज सुभाई दर्शन परसय गुरु खै। जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी। नूर अरसों कुरसों छठिए तुद डिठी सची पातशाह।

हे आम जपहुँ अवरह नाम जपाव हूँ, सुनत कहत रहत गत पावो, सार पूत सत हर को नाओ, सहज सुपाय नानो गुन गाओ। गुण गाव तेरी उतरस मैल, बिन सजाय हो मैं बिख फैल, हुए अचिंत बसै सुखनाल, सास ग्रह सरनाम संभाल, छाड़ सयान सगली मना, साध संग पावै सच धना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, यहाँ सुख दरगह जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख, एको जाप एको साला, एक सिमर एको मन आहे, किसके गुण गाओ अनंत मन तन जाप, एक भगवंत एको एक, एक हरया पूर्ण पूर्यो प्रभ आप, अनेक विस्तार एक ते पय एक, राध प्राशद गए मन तन अंतर एक, प्रभ राता गुरु प्रसाद नानक एक जाता, सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरणाए, नानकी प्रभ बेनती अपनी भगती लाए, अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रभ दान, कर कृपा देव हर नाम, साध जना की मांगो धूर, साध बार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर, सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तो मैं त्यावो, चरण कमल से लागै प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत, एक कोटि को आधार, नानक मंगै नाम प्रभ सार, प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावै बिरला कोय, जिन चाख्या से जन तृप्ताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सुबर परे प्रेम रस रंग, उपजै जाओ साध कै संग, परे सरनान सब त्याग, अंतर प्रकाशन दिन लिवलाग, बट भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेवक की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक की नो सदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन भया, जन मरण दुख भ्रम गया, इच पुनी सरदा सब पूरी, रव रहया सत्संग हजूरी, जिसका सतन लिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए, सो क्यों बिसरै जे काल न भानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै, सो क्यों बिसरै जे सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जे अगन मैं राखै, गुरु प्रसाद को बिरला लाखै, सो क्यों बिसरै जे मिखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांढ़ै, गुर पूरै तते है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो एह काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पाव, वाप जपो अवरह नाम जपाव, भगत पाए तरिय संसार, बिन भगती तन होसी शार, सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूट जात पाए विश्राम, सगल दुख का उतनास, नानक नाम जपो गुणतास, उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ, मन तन अंतर ही स्वाव, नेत्र उपेख दर सुख होए, मन बिकसै साध चरण धोए, भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावै संग, एक बस्त दीजै कर माया, गुरु प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कहीं न जाए, नानक रहया सर्व समाए, प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वशल सदा कृपाल, नाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आद पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत, हम निर्गुणियार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमखार के गुण गाए, अनिक राज भोग बढ़ियाई, सर्व अनिक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपते हर हर नीत, भली सुकरनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास, श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप, आपन किया नानक आपे ही फिर जाप, अष्टपदी जब कार्य कछ न दृष्टिता, पापुन तब कहते होता, जब धारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध के संग कमात, जब इसका वर्ण चिन्ह जापत, तब हरक सो को किसे व्यापत, जब अपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम, आपन खेला भरतीजा, नान करने हार न दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त को किसको गनी, जब एक हर अगम पार, तब नरक सुर्ग को कौन उतार, जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाए, तब शिव सक्त कहो कित थाए, जब आपे आप अपनी जो तरै, तब कवन निडर कम कत डरै,

पढ़े हैं बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया घट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी, जो पावै है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर न कोई, तू जुग जुग एको सदा, सदा तू एको जी, तू नेह चल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करह है सो होई, तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सुचियार मैडा साई, जो तो पावै सोई थीसी, जो तू देहे सोई हम पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों कृपा करे है तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल, जिसनों तू जानाए सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणै, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखै है जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सर वरड़ै पहले निवासा, पाणी पावक तिन है किया, पंक जो मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह दूबियले, मन एक न चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हों जती सती नहीं पड़िया, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी सरणा,

दुष्ट दोख ते लेहुं बचाई, कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूरन सुभ्राता, किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को सह करता, श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई, अड़िल सुने गुंग जो जाहे सुरस न पावै, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवै, दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रहै, हो जो जा की एक बार चौ पई को कहै, चौ पई संबत सत्रह है सहसपन जय, अर्ध सहसपन तीन कहि जय, भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा, तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा, स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहै मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सुबै बहु भेद कहै हम एक न जान्यो, सिरियस पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो सब तो ही बखान्यो, दोहुरा सगल द्वार को छाण कै गहो तुहारो द्वार, बाहि गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार, सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार, बाहि गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरु तम पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया, राग रतन परवार परिया शब्द गावने आइया, शब्दोता गाव हो हरि कीरा मन जिनी वसाया, कहै नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गलां सुमरत स्वामी सो क्यों मन हो विसारे, कहै नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाहीं करते रह, करतन तेरे सब किश है जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै, नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे, कहै नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं कर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब गवाइयां, घर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटो हों जिस दियां इह वड़े

हम नीच कर्मा शरण परे की रख हो शर्मा सो कहो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसेय गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसमदी नूर अरस कुरसों चटीय तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटीय सज्जन सच्चा पातशाहो सिरसा हांद साहो जिस पास बैठिया सोहिय सबना दा विसाहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी तिन ही सुनया दुख सुख मेरा तौ बिदनी की खटानी जिसका तन मन धन सब तिसका सोई

नगर वह भरिया मिल साधु खंडल खंडाहे पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर ले मंडल मंडाहे कर साधु अंजलि पन वडाहे कर डंडौत पन वडाहे रहाओ साकत हर रस साधना जानिया तन अंतर हो मैं कंडाहे ज्यो ज्यो चलै च वैदक पाव है जमकाल सहसर डंडाहे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन मरण पाव खंडाहे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बाव सो भंड ब्रह्मंडाहे हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड़ा।

0: ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए।
1: पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान,
0: पंचे सोहे दर्रा जान, पंचा का गुरे एक ध्यान। तौल तरम दया का पूत संतोख था प्रख्या जिन सूत, धरती होर पर होर होर तिस्ते भारत लै कवन जोर। लेखा लिख जाने कोई लेखा लिखिया कीता होए, कीता पसाओ एको क्वाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। जो तुत भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे हे उदास।
1: असंख
0: सुरमा पाक सार।

0: न सके कोई।
1: जेको खाए आखन पाए ओ जाने जीतिया मोहि खाए।
0: जाने आपे दे आके से पे के ईके।
1: जिसनो बख्शे सिव साला हनानिक पातशाही पातशाह हो।
0: अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारे अमुल भंडार।
1: मुला वह मुला जाहे मुल पाए मुला समाहे।
0: अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान।
1: अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फरमान।
0: अमुल आख्या न जाए आखा करे लिवलाए।
1: आख्या वेद पाठ पुराण आख्या पढ़े करे वख्यान।
0: आखे भरमे आखे इंद आखे गोपी ते गोविंद।
1: आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे कीते कीते बुद्ध।
0: आखे दान फाके देव आखे सुनर मुंजन सेव।
1: कीते आखे आखन पाहि कीते कह कह उठ उठ जाहे। जिवड़ भावे तिवड़ होए नानक जाने साचा सोए।
0: आखे बोल विगारता लिखिए सिर गावा रा गावा।
1: सोदर के है सो कर के है जित वह सर्व संभाले।
0: नाथ नेक संका केते वावन हारे।
1: केते राग प्रेस्यो कहियन केते गावन हारे।
0: गावे तुनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे।
1: गावे चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे।
0: ईश्वर ब्रह्मा देवी सुन सदा सवारे।
1: गावे इंद इदा सुन बैठे देवते अंदर नाले।
0: समाधि अंदर गावन साध विचारे।
1: गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे। गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले। गावे जोद महाबल सूरा गावे खानी चारे। से तुदनु गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाए। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन
0: उपाई।
1: जो तिस पावे सोई कर सी हुकुम न करना जाए।
0: हुंदा
1: संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह बेभूत।

0: पतित
1: आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत
0: आदेश से आदेश आदि अनादि अनंत जग जग जगे कोई
1: मुक्त ज्ञान दे भंडारण कटकट वाजे नाद
0: नादाति सब जाकी रिसत प्रसाद
1: संयोग वियोग दो कार चलावे लिखे आवे भाग
0: आदेश से आदेश आदि अनादि अनंत जग जगे कोई
1: एका माई जुगत व्याई तिन चले प्रवाण
0: संसारी भंडारी खिलाई दीवान
1: जिव तिस भावे तिव चलावे जिव होवे फुरमान आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस
0: भंडार जो किछ पाया सो एकावार
1: कर कर विखे सिरजन हार नानक सच्चे की साची कार
0: आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस
1: एक दूजी पाव लख हो हे लख हो वह लख वीस
0: एक नाम जगदीश
1: त्राहि पद पवड़िया चढ़िया होए कीस
0: आकाश की कीता आईरिस
1: नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस
0: जोर चुपे न जोर जोर न मंगन दे न जोर
1: जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राज माल मंसोर
0: सुति ज्ञान विचार जोर न जुगति चुटे संसार
1: जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच न कोए
0: पवन पानी अग्नि पाताल
1: इस विच धरती थाप रखी धर्म साल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत
0: कर्मी होई विचार सच्चा आप सच्चा दरबार
1: तिथे सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निसान
0: तच पकाए उते पाए नानक गया जापे जाए
1: धर्म खंड कहे हो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म
0: केते पवन पानी वै संतर केते कान महेश
1: केते बरमे घाट घड़िए रूप रंग के वेश
0: कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश
1: केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश
0: केते केते देवी वेश
1: केते देवदान मुन केते केते रतन समंद
0: केतिया खानी केतिया बानी केते पाद नरिंद
1: केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत
0: ज्ञान खंड में ज्ञान प्रच्छंद तिथे नाद बिनोट पूर्ण नंद
1: शर्म खंड की बाणी रूप तथा काढ़त घड़िए बहुत अनूप
0: गला कथिया न जाए जे को कहे पिछे पुछताए
1: तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सिद्धा की सुध
0: धर्म खंड की बाणी जोर तिथे हो न कोई होर
1: तिथे जोत महाबल सूर तिन में राम रहे भरपूर
0: सितो सीता मय मामाए ताके रूप न कतने जाहे
1: ना हमरह न ठागे जाहे जिन कह राम सह मन माहे
0: भगत वसे के लो करे आनंद सचा मन सोई
1: सच खंड वसे निरंकार कर कर वेख्या नदर ने

0: भुजंग
1: चतर चक्र दाने चतर चक्र जन्य
2: चक्रवर्ती चतर चक्र प्रति
1: चतर चक्र पालने चतर चक्र काले
2: चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे
1: चतर चक्र माने चतर

0: पति के,
1: श्री भगवान की पाए कृपाओं के, गति बिने गति के,
0: माते मतंजरे जर संग अनुपुतंग सुरंग सवारे,
1: ओ तुरंग कुरंग से गुदर पौन के गौन को जात।

0: सेवक से कम आरे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिया
1: जो बड़ी अमृत काल का त्रास नरिये
0: जो सदा हमारे पछास जो करियो रचा दीन बंदुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता
1: काल पाए शिव जी अवसरा
0: काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा
1: जो की शिव की हो वेद राज ज्योति हो
0: जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा आज अंत कह तारा सोई गुरु समझियो हमारा शिव कं को सब गुण सुख दियो सतरन को पलमो बध कियो
1: की पेड़ पिछाने
0: चिंती ते कुंचर स्तुला सब पर कृपा दृष्ट कर फुला।

0: तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद आलम का काम होड़ चात पेदा जाको पेव न पावत बिदा महादेव को कह सदा से निरंकार का चिंत न पेव तुमरा लखा न जाए पसारा के बेद सजा प्रथम संसारा
1: रंग पियो राव के भूपाल
0: अंड जेरत से तजकेने उत्पद खान बहु रच दिनी
1: कौन सी वो संगर गेता
0: सगरी सिस्ट दिखाया चंबव आज जुगा सरूप से जंबव
1: चंबरी तुम करो सिख वार सिख सुंगरो
0: दुष्ट जते उठव तो पाता सकल मलेश करो रण काता
1: सुषम सन में पले तिनके दस्तक तुमरे
0: पुरख जवन पग परे त्यारे तिनके तुम संकट सब तारे
1: जो कोई बात आए ताके काल गिन्नी आए
0: रचा होए ताए सब काला दुष्ट रिष्ट रे तत्काला
1: ताके ताप निंग मोरो
0: रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट चाश है सके न कोई
1: एक बार जिन्द में सुभारा काल फास्ते ताए वारा
0: जिन नर नाम त्यारो का दारिक दुष्ट दोख तेरा
1: कैस में सरन त्यारी आप हाते ले हो वारी
0: सर बटोर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई किल विक सकल देख को हरता दुष्ट दुखियन को क्षय करता मन बाजत पल पावे सोई धूप न तिसे व्यापत कोई अनिल
1: जो यास रसना पावे स्ने मोज लचितता आवे
0: पाव निकट ना तिन नर कह रहे हो जो या की एक बार चौपाई को कहे
1: समझ त्रस असनी जेद ससन दीन घी जे
0: पादर श्री अस्मीर वारा तीन सतत्र ग्रंथ सुधारा
1: पाएंगे जब ते तुमने तब ते कौन तेरे निया नियो
0: राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो
1: सासवे सो बेर खेम एक न जानियो
0: बांक पा तुम्हें कर मैं न कहे सब तो है बखानी।

0: राम कली महला तीजा आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरे माये सतगुरु में पाया
1: सतगुरु ता पाया सहज सेती मन

0: का भूले ना कीजे जित अंत पछताइए।
1: सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले।
0: हे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले।
1: अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया,
0: अंतो ना पाया किन्ने तेरा अपना आप तू जाने।
1: जी जन सब खेल तेरा क्या को आँख बखाने।
0: आखे ता वेखे सब तू है जित जगत उपाया।
1: कहे नानक तू सदा गम है तेरा अंत ना पाया।
0: सुनर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया।
1: पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन बसाया।
0: जी जन सब तू तो पाए एक वेक पर्सन आया।

0: शुभ बे किया जाए।
1: अनेक जूनी परम आवे बिन सतगुर मुक्त ना पाए।
0: फिर मुक्त पाए लाख चरनी सतगुरु शब्द सुनाए।
1: कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त ना।

0: कर्म कमाया,
1: के कर्म कमाया तुझ शरीरा जा तू जग में आया,
0: जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन न वसाया,
1: गुर प्रसादी हर मन वस्या पूर्व लिखिया पाया,
0: कहे नानक यो शरीर प्रवाण हो जिन सतगुर से उचित लाया,
1: ये नेत्रो मेरे ओ हर

0: हर का रूप है, हर रूप नदरी आया।
1: गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा, हर कहे हर बिन अवर न कोई।
0: कहे नान के नेत्र अंध से, सदगुर मिले द्रिप दृष्ट होई।
1: ए श्रवणो मेरे ओ साचे सुनने नु पठाए,
0: साचे सुनने नु पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी।
1: जित सुनी मन तन हरिया होआ, रसना रस समाणी।
0: सच अलख विडानी ताकि गत कही न जाए।
1: कहे नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र होवो साचे सुनने नु पठाए।
0: हर जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पवन वजाया।
1: बजाया वाजा पवन नौ द्वारे, प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया।
0: गुरुद्वारा लाए पावनी, इकना दसवां द्वार दिखाया।
1: तै नेक रूप नव नवनित, इसदा अंत न जाई पाया।
0: कहे नानक हर प्यारे, जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पवन वजाया।
1: एव साचा सुएला साचे कर गावो,
0: गावो ता सुएला का साचे, जिथे सदा सच त्यावे।
1: सच

0: भरत संकट मिटे दास तुम्हारो होए वाहे जी का खालसा वाहे जी की फतेह।
1: बड़ी वड्डी हूँ बड़ा।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लईं ध्याय। फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइयै जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौने दे आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यांतर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वन छकिया देख चलाई ते गवाही दे केंद्र कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यांतर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बन बन कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़े आर्यां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म निहारिया सिखी केसां स्वासां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवै चितावन का सदका सर्ब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत। देख देख पते विरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी।

हम अवगुण परे गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनिया गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु सरणाई, सो कहो टल गुर सेविए, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों जटीए, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो, जिस पास बहिठिया सोही है, सब नांदा वेसाहो। सतनाम

अंत संग काहु नहीं दीना बिरथायाप बंदाया ना हर भजियो न गुरजन सेवियो नैह उपजियो।

अस्थिर मत नहीं पाई, मानस देह पाए पद हर भज, नानक बात बताई। बहुत जन्म पर मत तै हरियो, अस्थिर मत नहीं पाई।